पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले बिहानको 9 बजे।

पार्थिवास एफएम समय सूचन। यो पार्थिवास एफएम को समय हो, अहिले बिहानको 11 बजे।

0: ओ मेरो फुलीवाली, अब के छ त फिक्रा?
1: के विचार? को फुलीवाली? म त बहिनी
0: बहिनी त साली, तिमी नै त अनि मेरो फुलीवाली।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार्क से हमारे दोस्त शम्स आलम जिनकी बेगम साहिबा सामिया जहरा उनसे नाराज बैठे। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

0: お前ね、ポジポジポジ。おでかおきやね。ちゃちゃちゃちゃちゃちゃ。
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी लिखवा ले का अरे अरे ए ए
1: आ जिगर पलट